साहिब जीओ दोहरा इन जोगी तपसी महद प्यो ब्रतंत विशाल सुन पिख नर नारी तहां अचरज पे तिस काल इन जोगी तपसी महद प्यो ब्रतंत विशाल

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: के उल्टा आई पुत्र जब
1: राम राम उल्टाती निकी मुसलमान किसा बेईमान की कहता
0: त्याग दियो लख साठ
1: मूर्खताई समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

माने। सुख सने अर पै नहीं जंक है, कंचन माटी माने। नह निंदिया ने उस्तद जंकै, लोभ मोह अपमाना। हरख सोग ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। इन चीजां दी व्याख्या है इतिहास, इन्हां दी प्रतक व्याख्या है। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। कितना चाह होएगा गुरु के सिखा नू इस जिंदगी दी कालना करन दा। कल रोज अपा इतिहास दी ओ लड़ी बिचारी सी, जदों 1726 दे विच तारा सिंह वां शहीद होंदा है। कैसे कैसे मोड़ बने, उस तो अगली लड़ी अज तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा। सुभाविक बात है भी उदों फिर दुबारे कहर शुरू हो गया। एक गल इत्थे ही नोट कर लीए, 1726 दा ही समां है। 1713 तो लेके 1726 तक अब्दुल समद खान ए लाहौर दा सूबेदार सी। एदे वेले सारे भाणे इकत्तर एदे वेले होए ने। 1726 विच बदल के इनू मुल्तान दा गवर्नर ला दिता गया। लाहौर दा सूबेदार एदा पुत जकरिया खां। मैं एक एक गल तुहाडे नाल बहुत प्यार नाल सांझी करनी, मेरे मन की भावना तुहाडे हिरदे की तख्ती ते लिखी जाए। 1726 तो लैके 1745 तक फिर जकरिया खां रहिंदा है। 1726 विच बदल के ए लाहौर दा सूबेदार बनदा है, इत्थों दा हाकम बनदा है। हुण उहने जदों ए तारा सिंह वां दी शहीदी होई अब्दुल समद खान दे वेले, इहने हुण कहर करना शुरू कर दिता पर सिखां नूं इवें चौधरियां नूं हथ पाउण दी ताकत पैदा होगी इत्यादिक। तारा सिंह वां दी शहादत तो बाद सिख भी इकट्ठे होए ते इन्हां ने तीन मते पास कीते। पहला मता यह पास किया भी इवें तारा सिंह वां नूं शहीद करना, क्योंकि असी ते घोड़ियां आप असी उन्हां दा कुछ नुकसान नहीं सी कीता, ते उन्हां दी सिक्खी दे खिलाफ इहो जिहे बचन कहना तारा सिंह वां दे प्रति जां उन्हां दे केसां दे प्रति, ते इह गल थोड़ी जी चुभी सिखां दे विच मनां विच। इन्हां ने सोच के कोशिश कीती भी हुण आपां पहला काम यह करना भी उहदी शहादत दा लोगां दे मनां विच प्रभाव पैदा करन वास्ते पहला काम यह करना भी खजाने लुटने ने। गरीब नहीं सी लुटिया जांदा, याद रखियो जी। अगे जाके मैं तुहाडे नाल सांझी करना, तीन मते पास कीते, एक खजाने लुटने, दूजा बेचारे सिख हथियार खरीद नहीं सन सकते, ना घोड़े खरीद सकते सन, हालात इहो जिहे सन। दूजा काम करना भी घोड़े ते हथियार लुटने हैं उन्हां दी जालमां दे। तीजा काम यह करना है इस वेले जिहड़ा सब तो वड्डा जरूरी है, आपा सारे सिखां ने इकट्ठे होके किसे भी काम दे लई इकत्रता बना के जिथे किते भी लोड़ पैंदी गरीबां दी मदद करनी, ते सिखां ने आपस विच इकट्ठे होके ते सिखी दे लई कुछ ना कुछ प्रचार जां जिवें दी लोड़ पवे सिखी दे वाधे लई इह काम करना। तीन मते पास होए, उन्हां दे दरमियान हुण उन्हां कुछ कीती भी खजाने लुटे जाण। मैं सिर्फ दो तीन का जिक्र तुहाडे नाल करना, बाकी नहीं कर सकता क्योंकि इतिहास दी लड़ियां बहुत लंबियां ने। अमृतसर साहब दे लागे चविंडा पिंड दे लागे सरकारी खजाना जा रहा सी, इन्हां 5 लाख रुपए का लुटिया। फिर दुबारे घोड़े लुटे, फिर दुबारे हथियार लुटे, लेकिन एक गल चेता रखियो, इन्हां ने कदे भी ए

शराब, नंबर दो नकली साध, नंबर तीन सोच, नंबर चार सियासत, इन्हें साड़ी सिखी उजाड़ के रख दिती। नंबर पांच है सरूप, यह जरा साडे को विगड़िया हुआ सरूप है, अज असी उन्हें भी सिखी उजाड़े बहुता कारण पाया। उस गल वाल वापस परतना चाहना, सिर्फ यह गल दसन वास्ते तुसी अमृतसर साहब जावो, चलो जे नहीं भी पाकिस्तान गए तो कम से कम उत्थे खलो के तुसी ए तां वेख के आओ ना भी इधर है लाहौर। जदों इतिहास सांझा करोगे, क्योंकि लाहौर नाल साडियां बड़ियां गहरियां सांझां ने, ते लाहौर दा पता ते लग जाएगा ना। हुण जदों नादर शाह आउंदा है, ओह लाहौर दे विच ही निकल के आउणा उहने। जदों लाहौर आया नादर शाह 1739 दे विच, तां उदों जकरिया खां, ये पिछे जिक्र आ चुका होया, 1726 तो 1745 तक वो रहिंदा है, लाहौर दा सूबेदार है। ओ जदों 1739 नादर शाह आया, ते उस वेले जकरिया खां ने 30 लाख रुपया लेके अपना वजीर लखपत राय नाल लेके अग्यों जाके मिल लिया। उन्हूं जाके कहन लगे भी तू लाहौर नूं उजाड़ना, 30 लाख रुपया ले लै। ते नादर शाह खुश हो गया, उन्हें लाहौर नूं नहीं उजाड़िया, उन्हें 30 लाख रुपया लिया, ते इहदे नाल जकरिया खां नूं लाहौर दा सूबेदार फिर बना गया। वो क्योंकि हुण ते प्रभाव जकरिया खान इहदा सी ना, नादर शाह दा सी ना, लाहौर हुण नादर शाह दे अधीन आ गई। मुड़के दिल्ली आ गया अमृतसर साहब दे विचों, ते अगे दिल्ली लंघ गया। हुण जदों इह दिल्ली गया, दिल्ली इहने जांदे आ सार 9 जून 1739 नूं, खिमा करे जी 9 मार्च 1739 नूं, 9 मार्च 1739 नूं इह दिल्ली दे विच कदम रख लै इक जेतू रूप विच। मोहम्मद शाह रंगीले नूं बचन कहिंदा भई तूं मैनूं 25 करोड़ रुपया दे दे, मैं तैनूं कुछ नहीं कहांगा। मोहम्मद शाह रंगीले कोल इन्ना खजाना कोई नहीं सी, पर उन्हें खजानिया दे मुंह खोल दिते भी जिन्ना तेरे कोल लुट हुंदा तू लुट ले जा, पर दिल्ली नूं कुछ ना कमी। उस वेले इन्हें 7 करोड़ हीरे मोती ते कुछ एक नगद, 7 करोड़ यह लुटिया। ते इहदे नाल नाल चेता रखियो, जे मैं बेनती करा, इहने एक तख्ते ताउस, नहीं पता होना मैं थोड़ा जा इशारा कर दिया, शाहजहान ने 1639 लाल किला बनाया सी, ते उहने दो दरबार बनाए सन, एक दरबारे आम दरबारे खास, जिहड़ा दरबारे खास सी उहदे विच अपने बैठण वास्ते तख्ते तौस बनाया सी, ने बहुत वड्डा तख्त बनाया सी, उहदे उत्ते खुद बैठदा सी। अज उहदा कल्ला पीड़ा जिहा उत्थे पिया, बाकी तख्ते तौस उह लुट के लै गया सी नादर शाह। नादर शाह ने तख्ते तौस लुटिया, और दूजी गल है कोहेनूर हीरा लुटिया। मैं बेनती करा इस कोहे नूर हीरे का अपन अगे जाके वास्ता पैना, हुण ध्यान विच रखियो भी नादर शाह दे कोल ए अफगानिस्तान तुर गया, उत्थों किवें वापस आउंदा, गल अगे जाके तुहानूं सांझी करांगा ज्यों ज्यों इहदे इतिहास विच जिक्र आएगा। यह नादर शाह दे नाल इक कोहे नूर हीरा, तख्ते तौस, 7 करोड़, 1000 हाथी, 1000 ऊंट, 1000 घोड़े, ते नाल सारा कुछ लैके यह जदों मुड़न लग्या, अचानक उस वेले एक भाणा वरत्या, इहनू किसे ने रौला पा दिता भई नादर शाह ते मार दिता। जदों इह रौला पिया दिल्ली दे विच, कुछ एक बंदियां ने नादर शाह दे सिपाही मार दिते। जदों नादर शाह दे सिपाही मारे, ते नादर शाह ने अपनी तलवार कढ के बाहर रख ली, कहण लगे जदों तक मैं नहीं कहिंदा उदों तक कतलेआम बंद नहीं होवेगा। एक गल चेता रखियो, 1,12,000 बंदा नादर शाह ने दिल्ली दे विच कतल करवा दिता, कोई थां नहीं सी रहेगी लंघण जोगी जिथे लंघ के रोकी जा सकदे होवण, और दिल्ली छोटी सी। मुड़के एन मोहम्मद शाह रंगीले ने बेनती की, ते उस वेले इहने अपनी धी दा डोला इहदे पुत्तर नासर शाह नूं देना पसंद कीता, भी मैं अपनी धी भी तैनूं दिंदा अपनी नूंह तेरी नूंह बना के, पर तू कृपा कर इस दिल्ली दी लुट नूं कतलेआम नूं बंद कर। मुड़ के दिल्ली दी कतलेआम तां बंद होई सी, अज भी लोग जदों कदे शब्द वरतदे ने ना इतिहास विच शब्द बन गया भी नादर शाही, इह तां कतलेआम है, भाव जिथे बहुत कतलेआम होवे उहनूं नादर शाही नाल कहा जांदा। हुण सिखी का इतिहास जुड़न लगा है।

मुखिया बनिया वह नवाब कपूर सिंह बनिया। मैं दोबारे थोड़े थोड़ी जी विचार साझी और करनी है, पहले एक बारी आप मिसलों की गल कर ली। जड़ी पंजवीं मिसल बनी वह कन्हैया मिसल बनी, एना मुखिया बनिया जय सिंह। छेवीं मिसल बनी करोड़िया, ते ओ करोड़िया मिसल दा जिहड़ा जथेदार बनिया वह करोड़ा सिंह बनिया। सतवीं मिसल बनी कन्हैया, एक कन्हैया मिसल दा जिहड़ा मुखी बनिया वह हीरा सिंह बनिया। अठवीं मिसल जिहड़ी बनी निशाने वाली, ओदी मिसल दा जिहड़ा मुखिया बनिया वह बनिया दसौंधा सिंह। यह भी बहुत सियाणा पुरख सी, मैं बेनती करा, कई ऐसे ना ने जिन्हां ते सिख इतिहास मान करदा। मैं बेनती करा जिहड़ी नौवीं मिसल बनी वह बनी रामगढ़िया मिसल। यह मिसल दे दो ना ने असल विच, इहदा पहला ना संघाणिया मिसल भी है। इहदा पहला जिहड़ा मुखी होया वह नौद सिंह संघाणिया सी। वक्त पिया इस मिसल दे उत्ते जल्दी जिहड़ा वह जथेदार चुनिया गया जत्था सिंह रामगढ़िया। संघाणिया मिसल इहदा नाम बहुत थोड़ा जिहा समां रहा, मुड़ के इस मिसल का नाम बदल के रामगढ़िया मिसल पै गया। दसवीं मिसल का नाम है शुकर चकिया। शुकर चकिया मिसल जिहड़ी उह चढ़त सिंह दे नाम ते बनी, इहदा मुखिया चढ़त सिंह बनिया। उहदा शुकर चकिया अखीरी नाम है क्योंकि इह उहदा इलाका है। जिहड़ी बारहवीं मिसल बनी उह बनी मिसल शहीदां, उहदा मुखी बनिया शहीद बाबा दीप सिंह। इहदी करनी तुसीं जाणदे ही हो, नमस्कार ऐसे पुरखां नूं। थोड़ा जिहा एक वारी फिर पिछोकड़ भुलना है। जिहड़ी पंगी मिसल है, एक मैं बेनती पहलों कर दिया, यह गल वैसे मैं दुख नाल तुहाडे नाल सांझी करन लगा। ऐस हुण हुण तक सिखां दी चढ़दी कला रही, तुसीं इतिहास विच दर्शन करदे आ रहे हो बराबर, पर हुण जिहड़ा ना उह सिखां दा निगार शुरू हो गया। ऐस मिसलां दे 1748 तों बाद थोड़ा जिहा निगार शुरू हो जाणा है। वह भी पक्ष हुण अपनी कौम दा लैणा ते नाल पएगा। इन्हां विचों जिहड़ी पंगी मिसल है वह लोग ने जिन्हां विच भंग बहुते पीते ने। एक कौम नूं बीमारी उदों तो लगी है बहुती, वैसे लगी मजबूरी विच सी, इस गल च कोई दो रामा नहीं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं सी हुंदा खाण पीण वास्ते। जो कुछ मिलना हुण दरख्तां नूं पी के पत्थरां दे थले उन्हां पत्तियां नूं पीस के, ते बड़ा औखा सी उस वेले। मैं एक छोटी जी घटना तुहाडे नाल सांझी करां। मेरी आदत है भी मैं कथा विच कदे अपने निजी जीवन की घटना कुछ सांझी नहीं करदा, पर अज एक मोड़ बन गया। जिथे दास कॉलेज विच पढ़दा सी 1984 विच, उदों हालात ऐसे बने बिल्कुल संखेप विच, क्यों कॉलेज का बेचारा पहले दिन तो ही गरीबी विच ही घुलदा आया। एदी किसी ने बाहरी बाली फड़ी, बड़े कार सेवां वाले कोल गए भी एक कमरा ही बना दियो, एक खिड़कियां लवा दियो, लेकिन किसी ने नहीं लवाईया अज तक भी। खैर एक वक्री गल है। उदों मुश्किल बने भी की खाइए की पीए, उदे विचार बने भी हुण की करिए, साधन कोई ना बने, ते असी मजबूर होया ने सफेदे दे पत्तियां नूं पीस के उदी चाह बना ली। रब जाने उन्हें की भाणा वरताया। तुसी इह हिसाब ला लो भी सारी दिहाड़ी ते सारी रात असी उठ के नहीं तुर सकते सी, इतना नशा पता नहीं उहदे विच की इहो जिहे भाणा वरतिया। मैं सिर्फ तां गल सांझी कीती, असी दो दिनां तों बाद मुड़ के कन्नां नूं हथ लाए, जिन्नी मर्जी मजबूरी पै जाए भावें खाण नूं कुछ ना भी मिले, क्योंकि उदो मिलटरी दा पहरा हुंदा सी, नहीं सी जाण दिंदे अंदर बाहर, ते पर असी कुछ होर नहीं खाणा, चावल उबाल के खाई जांदे सां, फिर मुड़ के चावल मिल गए। यह मैं बेनती तां कीती है, हो सकदा उदों सिखां ने जिहड़े दरख्तां दे पत्ते घोट घोट के पीते, ते उहनां विच कुछ एक नशा होवे, ते मुड़ के वह नशा पूरा करना

हट में वह वापस चला गया अपने वतन में। उस तो बाद विच गुरु के सिखा ने फिर कुछ एक इलाके में सोधिया। जब वक्त मिलता सी ना गंद बड़ा कटते सनी हो गया, उदो गुरु के सिखा ने फिर दोबारे सरहद ते हमला किया, सरहद के जालम सदिया ते एदे नाल ही उन्होंने मरिंदे ते कब्जा किया, मलेरकोटले ते कब्जा किया। मरिंदे नाल सिर्फ इको एक वास्ता सी, मरिंदे का जानी खां ते मानी खां। एक पल में तुहाडे होल लव साडा इतिहास बिगाड़ी बहुत जा रहा है, शायद आपको पता होना चाहिए। इस गल का लिखित नहीं आया, दास नू देखने का ही मौका मिले क्योंकि मैनू इतिहास नाल बहुत प्यार है। मरिंदे दे विच एक स्थान है, बाजार दे विच ही है, थोड़ा जा दस भी करमा पिछा हटके उत्थे ओह कोठा बनिया होया जिथे गंगू ब्राह्मण दे घरों लिया के ओ दो साहबजादे ते माता गुजरी जी नू, माता गुजर कौर नू उस कमरे च रखिया गया सी। उदो कच्चा कोठा होएगा डरावना जिहा। जानी खां ते मानी खां ए चाहुंदे सन भई मैं अज दी रात अज दा वक्त जिन्ना मेरे कोल हैगा मैं उहदे विच इन्हां बच्चियां नू तसीहे देके, माता गुजरी नू तसीहे देके इन्हां नू मना के ही वजीर खां दे कोल लैके जावां। पर उत्थे मन्ने नहीं सनो, छोटा जा कमरा टैटू गया, अजकल उत्थे कोई थां नहीं हैगी, कोई स्थान नहीं संभालिया होया। वो दस नू पता लग्या सी कि मैं दर्शन करन गया सां। ओ मरिंदे दे जानी खां ते मानी खां दे कीते हुए निक्के बच्चियां ते कहर लई, इसलिए उन्होंने मरिंदे नू भी सद्या। वक्त आया 1763 दा। 1763 दे विच सब तो पहला मेहनती करा जहान खान, ए पापी भी बहुत लंबे समय तो ए लाहौर दे विच सी, ए भी सिखी का खून पी रहा सी। अहमद शाह अबदाली दे मगरों ए भी अपने वतन नू जा रहा, अफगान नू जा रहा है। जहान खान नू पता लग्या भी ए जा रहा वापस, गुरु के सिखा ने इन चनाब दरिया के किनारे जाके घेर लिया। तो जदों इहदे ते हल्ला कीता ए आप जख्मी हालत विच भज के सियालकोट दे किले विच ते उत्थे चला गया। उस तो बाद भी जहान खान तो चला गया, इहदे मुड़के बच्चे सन। देखो सिखी दीआं कैसीआं तस्वीरां ने, इहदे बच्चे सन ते नाल इहदी घरवाली सी, नाल कुछ बीबियां होर सन। गुरु के सिखा ने उन्हां बच्चियां नूं उन्हां इस्त्रियां नूं बड़े अदब सत्कार नाल रखिआ ते नाल इक बचन आखिआ, कहिण लगे भलिओ सिखी दा इक किरदार नहीं है भी असीं तुहाडे उत्ते हथ चुकीए। 11 दिसंबर नूं 1763 नूं मैं बेनती करां, इन्हां नूं बड़ी हिफाजत दे नाल, 1763 दा जिक्र चल रिहा हुण चेते रखिओ जी, इन्हां नूं बड़ी हिफाजत दे नाल उन्हां ने जम्मू पहुंचाया। इक पल तुहाडा ध्यान होर दवावां, देखो इन्हां कोल गुरु गोबिंद सिंह जी दे लखते जिक्र आए ते इन्हां पापियां ने उन्हां नूं नीहां विच चुनवा दिता। ते जहान खान हालांकि रज के पापी सी ते उहदे बच्चे जदों उहदी घरवाली सिखां दे हत्थ आई ते उन्हां ने बड़ी हिफाजत दे नाल बड़े अदब सत्कार ढंग दे नाल उन्हां नूं जम्मू पहुंचाया, जिथे उन्हां ने कहा सी कि सिखी दा वखरा किरदार है। उन्हां इस्त्रियां ते उन्हां बच्चियां ते उन्हां बिल्कुल कोई कहर नहीं कीता, हालांकि चरत सिंह शुक्र चक्रिया इहदे विच सी शामिल। अगे गल नूं तोड़ा, इहदे दरमियान ही गुरु के सिख जिहड़े सन उह फिर दुबारे अक्तूबर दे महीने हरिमंदर साहिब अमृतसर साहिब दे विच इकट्ठे होए सन। इह सारीआं घटनावां 1764 दीआं ने, 1763 दीआं ने, खिमा करे जी। उदों इक कसूर दा हाकम सी उस्मान खान, उस कसूर दे उस्मान खान नूं

से जो टैक्स ले रहे ने है तो अनहोनिया गलां नहीं सिख इतिहास विच उन्हें कोई चंगा हथियार भी कोई नहीं भी आउंदे ने पांच सत्त नूं ते बूरो सांभ लैण डंडियां नाल ही उन्हां नूं मार मुकाया कैसा कैसा इतिहास है जिखाना सिर्फ बेनती कर रहा सा मैं जखीरो सिंगर पास बस्तर शस्त्र हिंसो खास रोगी अब कुछ बिन मर जाही रोगी बेचारे दवाई तो बिना मर जाते ने हट पट्टन बाजार सो नाही इन्हां दे कोल ना बेचारे कोल बाजार विच हट्टी भी जाने का वक्त ही नहीं जंगलों में रहिंदे ने कौन सिखां दे सिरां ते मुल रखिया हुंदा सी किते जाना नांगे खड़े और भूखे प्यासे दारू सिक्का नहीं किस पासे नांगे ने खरे ने भुखे ने कई कई दिनों के भुखे ने फिर भी रब दे शुक्र विच ने कोई पहनने लई कपड़ा भी नहीं कोई खाने लई भोजन भी नहीं कुछ भी सहूलत नहीं नांगे खरे और भूखे प्यासे दारू सिक्का नहीं किस पासे फिर पुछदा भी जे इन्हें भी हालात माड़े ने फिर ज्यौदे किवें सन आ हुण सिख भुला बैठा बस आ जिहड़ी दात है ना इहदे तों विछड़े होए असी उन्हें जवाब दिता रतन सिंह ने भंगो ने कह लगे ज्यूदे कहे आसरे सन कहने ज्यूदे इस आसरे सन गुर बचन की उनको आस यही खजानो सिंगन पास कह लगे उन्होंने गुरु के बचना ते अटल भरोसा हुंदा सी बस इको खजाना गुरु के सिखा को हुंदा सी अज सिख नू उन्ना बाणी ते भरोसा नहीं है जिन्ना हथ देखण वालियां ते भरोसा है ताई करके असी खुआर हो रहे हैं जाबे गए विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत असी वो लकीर टप गए आओ प्यार वालियो इत्थे सिखी दा एक दौर खत्म होया इस इतिहास दा एक दौर खत्म होया उस तो बाद अगला दौर है जिहड़ा मिसलां किवें तरक्की करके राज तख्त ते महाराजा रणजीत सिंह नूं बिठाउंदियां ने इह आपां कल तो जिहड़े दो चार दिन बाकी ने उन्हां विच मैं कोशिश करांगा पूरा कर सकां हुण इह भुल्लां दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की साहिब जीओ जो हमारी विदोहती मेरी सतगुरा